दुख रोग संताप त्रे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर आप पूरे

सो कहो डल गुर सेविया अहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

चाहो ने चल चोर पौड़ी बड़ी बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग ने जपन करतबा जी अंदर जी उस पे जाला सब कुछ तेरे वास तेरा कृपला तेरे कारण अनंत बधाई तुद कर मान में ता तेरे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जात कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत

कोई न जाने तुमरांतु चेते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जा।

दर्शन स्नान चौकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मनी वा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ।

0: अब तुम्हें जो जो तुम्हें जाता है अगल कला पर पूरा तू सच्चा साहेब सिफ्त सवाले हो जिनकी ती सो पार पिया कहुना नक करते किया पता जो किस करना सो कर रहे सोदर आसा महला पहला क्यों का सच दुर प्रसाद
1: सोदर तेरा के हा सो कर के हा चित पै सर्ब समाल बज तेरे नाद अनेक असंखा कित तेरे वावन हार कित तेरे राग परे स्यों कहिए कित तेरे गावन हार गाव तुन पवन पाणी बै संतर

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा, सबदया वहीं तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर ते अब हो संतो जी, सब दुख विसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज वडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना, तू पर ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हरते आवहीं तुद जी, से जान जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए, जैनों हर ते आया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन हर निरपाओ ते आया जी, तिन का पाओ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, भरे बयंत बेअंता, तेरे भगत सलाहण तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापहीं जपहीं बयंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी, कर किरिया खटकर्म करंता, से भगत बले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेबड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहें सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचिया रमिंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दहें सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुद आ विछोड़िया आ मिलाया, तू दरिया सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिंदु जा अवर ना कोए, तू कर वेखें जाने ही सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला।
तत सर्वरड़ फैले निवासा पाणी पावक तिन्ह किया पंकजो माह पग नहीं चले हम देखा तह डूबी अले मान एक न चेतस मूड मना हर बिसर तेरे गुण गलया रहो ना हो जती सती नहीं पड़या मूल।

कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहौ जप तप संयम धर्म ना कमया सेवा साध ना जन्या हर रया कहु नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रख हो शर्मा जप तप संयम धर्म ना कमया सेवा साध ना जन्या हर रया कहु नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह बादशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो आभात दे मुहे बचाव हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब ऐरन को आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखा मारे तारी है चुन चुन शतर हमारे मारी है आभाद मुझे ओवरिए मरण काल का त्रास निवरिए हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करी हो रक्षा राख लियो मोहे राखण हरे साहिब सन सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दसकंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार हैं तहें हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पढ़ पढ़ की जाने जाव उदकर्क करा कर तारा प्रजा तर्थ तव देहे अपारा जब आकर्ख कर तुहों कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदना श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरालम जानत वेद भेद अर आलम

है ताकि काल निकट न अह रक्षा हो ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला।

कर्म सब होई दुष्ट सहा शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे ओबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे देहो ओबारी, सरठ मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई, खड़ग के

सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे तब ते कहूँ आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मन्यो सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहुभेद कहें हम एक ना जान्यो श्री असमान कृपा तुम्री कर।

अड के गयो तुहारो द्वार, बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा, सगल द्वार कौ छे गयो तुहारो द्वार, बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा। राम कली महला तीजा अनंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां वाया सहि सेती, मन वजियां वाधाइयां।

पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे।

0: की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे।

ताको दुख कहाँ व्यापे, जाको ओट तुहारी, हर बिसरत सदा खुआरी। ताको दुख कहाँ व्यापे, जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे, अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण ते नहीं गाए, जाको कृपा तारी।

और पता की आख्या कहन लगे भी ए तां कूकर कूकर शब्द आपां सीधा वरत लईए कुत्ता कहिंदे भी ये तां जिहड़ा तूं साडे अगे रखिया हुण किन्नी बुद्धि भ्रिष्ट हो चुकी आ इन्ने माड़ी शब्दावली मुख तों इन्हां दे निकलदी आ कहन लगे ये तां कुत्तियां दे खाण वाली आ जिहड़ी तूं साडे अगे लिया के रा ये बुद्धि भ्रिष्ट दी निशानी है जिहदी मत मर चुकी है। उस वेले उन्हें वह थाली विचों प्रशादा चुकया तो कूकर होएगा उत्थे आस पास उन्हें उस वेले वगा के एक गल होर ध्यान च रखियो जो गल वगा के मारन की आई है तां बेनती कर लगा जो सानू खाण वास्ते मिलदा ना शुकराना करके खा लिया करिए रुखा सुखा मिलदा जां वधिया मिलदा कदे भी प्रशादे वाली थाली नूं असी हाथ ना मारीए लत ना मारीए भावें ठंडा मिलता है भावें गर्म मिलता है सुक्का मिलता जिदा का भी मिलता है बहुत ऐसे लोग ने जिन्हों बिल्कुल एक दाणा भी नहीं मिलता वो तरसते है देखीद कई ऐसे होंगे जेडे कूड़े के ढेर विचों चुक के भी चुग के खा रहे होंगे सानू तो फिर भी मालक ने वधिया खाण लई दिता है असी फिर भी लत्तां मारदे हैं असी फिर भी ठुकराने हैं शुकराना करिया करिए कि तू दाता दातार तेरा दिता खावना ते जे असी अन्न नू लत्तां मारांगे ते जिदन ना मिलिया उदन फिर तरसांगे फिर एक एक दाने दे मोहताज हो जाना पैना है। इसलिए हर वक्त शुकराना करो जह प्रसाद छत्ती अमृत खाए जिदी किरपा नाल असी ये स्वादले भोजन छकदे हाँ। इन्हें उस वेले चुके थाली विचों प्रशादे ते उत्थे कोई आस पास कूकर होएगा कुत्ता उहदे अगे सुट दिते कहिंदा ये साडे खाने

महाराज दे नेत्र लाल हो गए सिख दा दुख देख के उदी हालत देख के भी ये तो एक सिख की कहानी है मसंदा ने पता नहीं किन्ने सिखा नाल इस तरह का दुरव्यहार किया होगा किन्ना सिखा नू डराया होगा गुरु के नाम ते किन्ना धन इन्होंने इकट्ठा किया होगा की कुछ ये जड़ा भख अपख सब कुछ खाई जाते हैं हंकार का नशा भी तो शराब का नशा भी करी जाते हैं जबकि पढ़ाई की पढ़ाई है जित पीता है मत दूर होए बरल पवे विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए उनू मालक दे दर तो धक्के पैंदे आ उनू मालक दे दर दरगाह विच ढोई नहीं मिलदी वह दुख ते नरकां दा भागी हो जांदा है पर इन्हां विच डर ही कोई नहीं रहा उस वेले महाराज ने हुक्म बखाना अपने सिंघां नू महाराज ने हुक्म जारी करता हालांकि पहला मसंद प्रथा खत्म कर चुके हैं महाराज खालसा पंथ साजन तो पहला खालसा साजना दिवस तो पहला महाराज ने मसंद प्रथा नू खत्म कर दिता सी पर जिथे जिथे ये कुछ बचे हुए मसंद मन मानिया कर रहे सी हुण वो सामने आ गया इन्हों का कहिंदे जदों महाराज ने सारा कुछ समझ लिया हुक्म जारी किया सिंघां नू भी खालसा जी जिथे जिथे भी कोई मसंद है

सठ कठोर कुचिल कुज्ञानी तावत प्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता बिचरत बिकल बड़ो अभिमानी पर तन

पेखत सुनत प्रभ अंतर जामे, सील तरम दया सुचनासत, आयो शरण जी के दानी, कारण करण समरथ श्री तार, राख ले हो नानक के स्वामी, कीरत करण सरन मन मोहन जो

चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो होछो काज अलप सुख बंदन।

रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार तरी खान पान सोदे सुख पंचत संकट काट विपत हरी मात पिता पाई अर बंदप बुजण की सब सूझ परी बर्दमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रम सिमर सुहा

बिलाम है गर्बत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना सुत बनिता साजन सुख बंदप तास्यो मोहो बड़ेओ सुकना बोयो बीज अहं मामे अंकुर बीतत औद करत अगना मिरत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना देहे ना गेहे ना नेहे ना नीता माया मत कहा लो गार हो छतर ना पतर ना चौर ना चावर बहती जात हृदय न विचार हो रथ न असव ना गज सिंहासन छिन्न मह त्यागत नांग सिधार हो सूर न बीर ना मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट ना कोस न छोटा करत विकार दौ कर चार हो मित्र न पुत्र कलतर साजन सख उल्टत जात बिरक्की छार हो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपार हो श्री पत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा

0: माया रंग बिरंग करत परम मोके कूप गुबार परयो है एता गब आकाश नामावत बिष्टा अष्ट किरम उदर भरयो है दै दिस धाए महा बिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन डन मृत मरयो है अनिक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गरयो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ धारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण आधारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलिहारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलिहारी
1: आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कवल संग दामन बद्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रिहो जंतूर लग नी न साकस बोर चले हर पंथ पग नानक रोख दोख अगमो छिदे हम हर नाम खग सत जुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेते तै माण्यो राम रघुंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन को राज अभय भक्ते जन दियो कलयुग परमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
2: जय जयकार जास जग अंदर मंदर भाग जुगत शिव रहता गुरपुरा पायो बड भागी लिव लागी मेदन पर सहता पै भंजन पर पीर निवारन कल सहार तोए जस भक्ता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता त्रम तीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारन शब्द सार हर सम उदार अंग मेव निवारन महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ न हुटै सतवंत हर नाम मंत्र नव नकदना नु खुटे गुर रामदास तन सर्व मैं सहज चंदोआ ताण्यो गुर अर्जन कल उचरै तैराज जोग रस जान्यो
3: समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निस बासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांड रयो भन दास वा जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरयो अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत पहर लाज की हर नाकस पारे कर आज फुन द्रौपदी राज रखी हर प्रभ जी शीनत वस्त्र दीन बोसाज सुदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे ते काज ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਪਰਸਨ ਕਾਲ ਜੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾੜ ਕੀ ਲਾਜ।
4: ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੋਹੋਂ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੈ ਤੁਰ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਤਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਹੈ ਲੋ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਨ ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅੱਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਸਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ।

जेह लग पाओ जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर पावे देहो दरस मन चाओ, भगत एह।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पात शाह सिर शाह दे शाह हो।